परेशान हूँ मैं, हर परेशान हूँ मैं, हर परेशान हूँ मैं, हर परेशान परेशान हूँ मैं, उनकी समस्याओं से परेशान हूँ मैं, घर वालों की तारों से परेशान हूँ मैं, लोगों की बातों से परेशान हूँ मैं।

कर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर आकर जाकर है।